हिकु ग़रीब थी चवे थो मौला ॾे ढिजरे बि ॿनीअ जो आहे अठ पुट आहिनि रोज़ी मस इज़त जी ॾेढ लख किथां आणिया।

आसम जी आका जीअर पुजायो रहमान है आस अब्दुर रहमान जी मौला जी।

आसम जी आका जीअर पुजायो रहमान है आस अब्दुर रहमान जी मौला जी।

0: और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन वे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-579 03-00-33-8-5-69।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0 3 4
1: शाह वल्द सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराब पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराब पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वजन जो न वधन उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लए 0301-96-8015
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती

0: It's 10 a.m. This time check is from
1: Bangal Habishta Seka.
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बची मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर इरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000072734 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
3: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385569
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
5: इरशाद होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहरापुर की आवाज GFM 94

मशीन जे जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी।

आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा

0: अचणंदड़ बीमार ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569-0300-3883-8559।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत-ए-मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा नाइन मोटरसाइकिल जी सेल कटते दस्तयाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पैंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए की जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नौ दुकान खोलियो तुम पर हले ही

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराजो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे तो राबते लाइ 0301-96-851।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे, मेरी दरख्वास्त

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो।
2: वो हारिस की मोहब्बत से
0: बात करेगी
3: मगर मुझे ना मिली तो बर्बाद।
0: माफ नहीं करेगा देखना, मैं ना पैरों के सामने तबाही।
4: तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी
5: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
6: आज के

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे करे निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
5: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-385-569 0300-338-5569।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: ताज़ा तरीन अपलोड की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: अल्लाह मदीने मन कदें थी दो।
2: हाय हाय।

0: गिफ्ट्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान।
1: गिफ्ट्स पास्ता
2: दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली पाकिस्तानी प्रोडक्ट फाइजा ब्यूटी क्रीम।
3: सिंधी रवाजन जी बैठक, मिजान जी बैठक, प्रीमियम चूरो चाय।
4: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
5: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड। किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।

पाकिस्तान अमेरिका ऐं ईरान विच में जारी छिकताण जे ख़ात्मे जे लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। घर वज़ीर मोहसिन नक़वी ॾींहुं 24 कलाकनि दौरान ईरानी परदेह वज़ीर अब्बास इराक़ी सां तहरान में ॿी मुलाक़ात। तहरान ऐं वॉशिंगटन में इम्कानी मुआदे वारनि तजवीज़ुनि ते ॻाल्हियूं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फारस मूजिबि ॿिन्ही अॻवाननि अमेरिकी ऐं ईरानी तजवीज़ुनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ज़रियनि मूजिबि पाकिस्तान जो अहम वफ़द अॼु तहरान वञी सघे थो। ईरान पाकिस्तान जी सासीअ में अमेरिका सां ॻाल्हियूं जारी रहण जी तसदीक करे छॾी। अमेरिकी तजवीज़ुनि ते तहरान नओ जवाब वॉशिंगटन खे मोकिले छॾियो। मुआदे जे लाइ रस्मी फ्रेमवर्क तयार करण जूं कोशिशूं तेज़। ईरानी ख़बरु इदारे मूजिबि तहरान ऐं वॉशिंगटन में पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। ॿई धुरियूं मुआदे खे हतमी शिकिल ॾियण जे लाइ हिक ॿिए खे पाकिस्तान ज़रिए पैगाम पहुचाए रहियूं आहिनि। ईरानी अमलदार मूजिबि अमेरिका सां अञा ताईं मुआदो तय नाहे थियो। इख़्तिलाफ़नि में घटिताई ज़रूर थी आहे। आबदा हरमोस ते ईरान टोल लॻायो त तहरान ऐं वॉशिंगटन में सफ़ारती मुआदो न थींदो। दुनिया में केर बि आबदा हरमोस ते टोल जे हक़ में नाहे, इन खे क़बूले नथो सघजे। अमेरिकी परदेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त तहरान सां ॻाल्हियुनि में कुझु मस्बत इशारा मिलिया आहिनि, वधीक पुरउमीद न आहियां। ईंदड़ कुझु ॾींहनि में शयूं वाज़े थी वेंदियूं। अमेरिकी कांग्रेस में ईरान जंग बाबति सदर ट्रंप जा इख़्तियार महदूद करण वारे ठहराउ ते वोटिंग मुल्तवी। कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी जी क़यादत जे चवण ते वोटिंग मुल्तवी कई वई। अमेरिकी मीडिया मूजिबि ठहराउ ते डेमोक्रेट्स जा वोट्स मुकमल हुआ, जंहिं सबबि रिपब्लिकन पार्टी वोटिंग मुल्तवी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन जे अहम दौरे ते सुभाणे बीजिंग रवानो थींदो। पर हीउ तर्जुमान पारां तसदीक ताहिर हुसैन इंद्रावी चयो आहे त वज़ीर आज़म सुभाणे खां 26 मई ताईं चीन में मौजूद हूंदो। सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चियांग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। पाकिस्तान जूं विचोभर में छिकताण जे ख़ात्मे जे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। घर वज़ीर मोहसिन नक़वी तहरान जा ॿ अहम दौरा कया आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि मामले ते आलमी अॻवाननि सां राब्ते में आहिनि।

कराची में शाहराह भुट्टो की तामीर मुकम्मल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अभी शाम रोड जो बाजाबता इफ्तिताह कंदो। वरी वजीर मुराद अली शाह चयो आहे त शाहराह भुट्टो शहीद बेनदी जो मनसूबो हो जंहिंखे सिंध हुकूमत मुकमल कयो। शाहराह भुट्टो कराची जी मुआशी तरक्की, जदीद ट्रांसपोर्ट ऐं शहरी सहूलियतुनि जी नई सुञाणप बणिबो। कराची सिंध जी जान ऐं पाकिस्तान जी दिलि आहे। शहर जी तरक़ी असांजी तरजीह आहे। 49 किलोमीटर जो रस्तो 40 अरब रुपियनि जी लागत सां मुकमल कयो वियो। सिंध पुलिस सूबे में अमन क़ाइम करण में नाकाम, तकरारनि ते बि गुंजो न आयो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में औरत समेत 7 ॼणा क़तल, 1 ॼणे जो तशद थियल लाश थिए। बख्शापुर भरिसां भंगवार बिरादरी जी बिंदुरनि में झेड़ो, औरत समेत 3 ॼणा क़तल। ॻोठ सखवान जाफरीअ में थियल झेड़े में मेहार भंगवार, ग़ुलाम फरीद ऐं औरत आलिम उमर जी वई। पलांद में 1 औरत समेत 3 ॼणनि खे क़तल कयो वियो। कश्मोर भरिसां बि कचे में कोश ऐं शरधुरनि में झेड़ो, बदनाम धाड़ियल भूरो शर ऐं नूर मोहम्मद कोश समेत 3 ॼणा मारिजी विया। ॿिन्ही धाड़ेलनि जे सिरे ते 50 लख रुपया इनाम बि रखियल हो। मारिजी वियलनि में मारूफ शर बि शामिल। गबर भरिसां बि पोयर सईद भट्टी डंडा हणी क़तल। न्यू सईदाबाद भरिसां नौजवान अब्दुल लतीफ़ जमाली जो घर मां तशद थियल लाश थे। पुलिस 3 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस मुजिबि वाकिए में मुलविज़ उमीद अली रांझण ऐं अलीगुल जमाली खे गिरफ़्तार कयो आहे।

0: अब आप सुनेंगे, आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे, मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
4: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8559-69।
5: माशाल्लाह फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहराबपुर।

0: PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीजन जो इलाज कंदा आइन हर जुमे छंछर एंड आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो या रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने थो। राबते लाए 03016196851।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
4: नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाई नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन है। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए 2 कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
5: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज का इशा जे निमाज तई आई हर आचर ते सुबह जो 9 बजे का रात 8 बजे तई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाए 03 85 569 03003 8569।
6: आंगन ई टूट गयो गड्डी दी गुजारूंगा। السلام علیکم ادا.
7: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
6: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا؟
8: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
6: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
7: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ہے.
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
8: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
9: 0301-399-2836
8: آئی محمد عمر گوری 0319-15-57-724.
10: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली पाकिस्तानी प्रोडक्ट फाइजर ब्यूटी क्रीम।
2: अमेरिकी तजवीज ते तेहरान नव जवाब वॉशिंगटन के मोकले छो। मुआदे के लिए रस्मी फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिशों तेज। ईरानी खबरू इदारे मूजिब तेहरान ए वॉशिंगटन में पाकिस्तान जरिए गालू जारी हैं। बई धुरू मुआदे के हतमी शिकिल देने के लिए एक बे के पाकिस्तान जरिए पैगाम पहुंचा रही हैं। ईरानी अमलदार मूजिब अमेरिका से अजा तई मुआदो तय ना थो, इख्तिलाफन में घटताई जरूर थी है। नव जवाब वॉशिंगटन के मोकले छो। मुआदे के लिए रस्मी फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिशों तेज। ईरानी खबरू इदारे मूजिब तेहरान ए वॉशिंगटन में पाकिस्तान जरिए गालू जारी हैं। बई धुरू मुआदे के हतमी शिकिल देने के लिए एक बे के पाकिस्तान जरिए पैगाम पहुंचा रही हैं। ईरानी अमलदार मूजिब अमेरिका से अजा तई मुआदो तय ना थो, इख्तिलाफन में घटताई जरूर थी है।

वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के अहम दौरे से सुभाने बीजिंग रवानो थींदो। परेही तर्जमान ताहिर हुसैन इंद्रावी चवाए त वज़ीर आज़म सुभाने का 26 मई ताईं चीन में मौजूद हुंदो। सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म ली चुयांग ए बियन सां मुलाकातूं कंदो। पाकिस्तान जो विचोभर में छिकतां दे खात्मे जे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी तहरान जा बि अहम दौरा कया आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि आलमी अॻवाननि सां राब्ते में आहे। सिंध असेंबली पाक चीन दोस्ती बाबत थारा समेत मुख्तलिफ़ बिल्स की मंजूरी दे छी। सिंध वर्कर्स वेलफेयर फंड्स बिल, सिंध मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन काउंसिल बिल, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की रेगुलेशन वो बिल और सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन तरमीमी बिल मंजूर किया वह। सिंध असेंबली जिना अस्पताल और NICH रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल की भी मंजूरी दिनी। सीनियर सूबा वजीर सहजी इना मेमन पाक चीन दोस्ती समुंड का ऊनी हिमालय का ऊंची और माखी का मिठी है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के 75 साल मुकमल थे। कराची रस्ते वड़े पैमाने से चीन से व्यापार थी रो है।

कराची में शाहराह भुट्टो की तामीर मुकम्मल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदार अॼु शाम रोड जो बाज़ाबता इफ्तिताह कंदो। वरी वज़ीर बराद अली शाह चयो आहे त शाहराह भुट्टो शहीद बेनज़ीर जो मनसूबो हो, जंहिंखे सिंध हुकूमत मुकमल कयो। शाहराह भुट्टो कराची जी मुआशी तरक़ी, जदीद ट्रांसपोर्ट ऐं शहरी सहूलियतुनि जी नई सुञाणप बणबो। कराची सिंध जी जान ऐं पाकिस्तान जी दिलि आहे। शहर जी तरक़ी असांजी तरजीह आहे। 49 किलोमीटर जो रस्तो 40 अरब रुपियनि जी लागत सां मुकमल कयो वियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 333 8569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-91-896
1: क्या देख रहे हो
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
4: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3 85-569-03-00-33-8-5-69

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन।
1: पाकिस्तान अमेरिका ए ईरान विच में जारी छिकतान के खात्मे के लिए कोशिशों तेज कर छू। घर वजीर मोहसिन नकवी दी 24 कलाकन दौरान ईरानी परदेह वजीर अब्बास इराकी से तेहरान में बी मुलाकात। तेहरान ए वॉशिंगटन में इम्कानी मायदे वाले तजवीजन से गाल। ईरानी न्यूज एजेंसी फारस मूजिब बिन्ही अगवान अमेरिकी ईरानी तजवीजन से तफसीली गालबोल कई है। जरिए मूजिब पाकिस्तान जो अहम वफद अज तेहरान वही।

ईरान पाकिस्तान की सालसीय में अमेरिका से गाल जारी रहने की तस्दीक कर छी। अमेरिकी तजवीजों से तेहरान नव जवाब वॉशिंगटन के मोकले छो। माहे लाइ रस्मी फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिशों तेज। ईरानी खबर इदारे मूजिब तेहरान ए वॉशिंगटन में पाकिस्तान जरिए गाल जारी हैं। बई धुरू माहे के हथ में शिकिल देने एक बे के पाकिस्तान जरिए पैगाम पहुंचा रही हैं। ईरानी अमलदार मूजिब अमेरिका से अजा तई माहो तय रहे थो। इख्तिलाफन में घटताई जरूर थी है।

आबनाए हरमुस से ईरान टोल लगाया तो तेहरान वॉशिंगटन में सफारती मुआदो न थी दो। दुनिया में कें भी आबनाए हरमुस से टोल के हक में ना इनके कबूले न तो सकते। अमेरिकी परदे वजीर मार्को रूबियो तेहरान से गाल में कुछ मसबत इशारा मिलिया पुरउमीद ना इंदड़ कुछ ढीह में शूं वाजे थी वेंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के अहम दौरे से सुबह बीजिंग रवाना थन्द पर तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदिरा भी है वजीर आजम सुबह का 26 मई तीन चीन में मौजूद हों। सदर शी जिनपिंग वजीर आजम ली चियांग बेन से मुलाकातू कह पाकिस्तान जो विच भर में छकता खात्मे के लिए कोशिशू जारी। घर वजीर मोहसिन नकवी तेहरान जहा ब अहम दौरा क्या नायब वजीर आजम इसाक डार भी आलमी अगवान से राबते में है। फील्ड मार्शल के तेहरान के दौरे बाबत तस्दीक या तरदीद न कदस। सिंध असेंबली पाक चीन दोस्ती बाबत सहारा समेत मुख्तलिफ बिल की मंजूरी दे छी। सिंध वर्कर्स वेलफेयर फंड बिल, सिंध मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन काउंसिल बिल, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज ए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के रेगुलेशन वो बिल ए सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन तरमीमी बिल मंजूर किया वह। सिंध असेंबली जिना अस्पताल एनआईसीएच रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल की मंजूरी भी डी। सीनियर वजीर शहजरीना मेमन चाहे पाक चीन दोस्ती समुद्र का उन्हीं हिमालिया का ऊंची ए माखी का मिठी है। पाकिस्तान चीन की दोस्ती के 75 साल मुकम्मल थे। कराची रस्ते बड़े पैमाने से चीन से व्यापार थी रो है।

कराची में शाहराह भुट्टो की तमीर मुकम्मल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी अज शाम रोड जो बाबा इफ्ताह कह वरी वजीर मुराद अली शाह है शाहराह भुट्टो शहीद बेनजीर जो मनसूबो हो जैसे सिंध हुकूमत मुकम्मल कर। शाहराह भुट्टो कराची की माशी तरक्की जदीद ट्रांसपोर्ट ए शहरी सहूलत नई सुण बणबो। कराची सिंध की जान ए पाकिस्तान की दिल है। शहर की तरक्की असाजी तरजीह है। 49 किलोमीटर जो रस्तो 40 अरब रुपये की लागत से मुकम्मल किया वो। सिंध पुलिस सूबे में अमन कायम करने में नाकाम। तकरारन ते भी बुंजो न आयो। मुख्तलिफ शहरन में औरत समेत 7 जना कतल। 1 जने जो तशद थे लाश थे। बख्शापुर फसा भंगवार बिरादरी की बिन धुरन में छेड़ो। औरत समेत 3 जना कतल। गोठ सफवान जाफरी में थे छेड़े में मेहार भंगवार गुलाम फरीद औरत आलिम मारजी वही। पलांद में 1 औरत समेत 3 जन के कतल किया वो। कश्मोर फसा बे कचे में कोश ए शरधुरन में छेड़ो। बदनाम धारेल भूरो शहर नूर मोहम्मद कोश समेत 3 जना मारजी वाया। बिन्हीं धारिल के सिर से 50 लख रुपया इनाम भी रखल हो। मारजी वाल में मारूफ शर भी शामिल। गमर भरसा में पर सईद भट्टी के डंडा हणी कतल किया वो। न्यू सईदाबाद भरसा नौजवान अब्दुल लतीफ जमाली के घर में तशद थे लाश हथ। पुलिस 3 जन के गिरफ्तार कर वरतो। पुलिस मुझे वाक्य में मुलविज उम्मीद अली रांझण ए अली गुल जमाली के गिरफ्तार किया है। सिंध के मुख्तलिफ शहर में सियासी ए मजहबी जमातों जहा महंगाई खिलाफ मुजाहरा। जे वाई पारा महंगाई ए बदमनी खिलाफ सखर कंबर लाड़कानो हैदराबाद नवाबशाह वीरपुर माथेलो ए सांगण में एहतजाज किया वो। जमात इस्लामी के सर से कोटली कंधकोट तलहार ए जैकबाबाद में मुजाहरा। नौशहर फेरोज उमरकोट ए सेवण में एसयूपी एहतजाज किया। हैदराबाद ए मटियारी में कौमी अवामी तहरीक पारा महंगाई खिलाफ एहतजाज किया वो। महंगाई से जब्तो आनने जो मुतालबो। कोकेन क्वीन अनमोल पिंके की मुख्तलिफ केस की सेंट्रल जेल कराची में कायम अदालत में बुधी। अदालत पुलिस की रिमांड वाली सदा रद्द कर छी। अनमोल पिंके की अदालती रिमांड से जेल मोकले छो। जांच ऑफिसर्स के इंदर बुधनी केस जहा चालान पेश करने जो हुकुम।

जेको भरिसां कोर्ट सिधी कार्रवाई में पसंदि परणे तां घरनि खे बाहि ॾियण वारे केस ॾींहुं सिंधा कोर्ट लाड़काणो बेंच में ॿुधणी। अदालत अॻवा ॼाणायल ॿिनि निंगरनि खे 2 जून ते पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। SSP जेको बाद खे ॿींदड़ ॿुधणी ते ज़ाती हैसियत में पेश थियण जी हिदायत।

0: घोटके भरिसां मुबैना तौर अगवा बाद इज्तिमाही लजालत जो निशानो भरियल नारीअ जे गोराहारी हुअण जी तस्दीक थी वई। निजी अस्पताल जी लेबोरेटरी जी मेडिकल रिपोर्ट में नारी जे गोराहारी हुअण जी तस्दीक थी। कुझु ॾींहं पहिरीं आदिलपुर वासी नारी बासरनि ते इज्तिमाही लजालत करण जो इल्ज़ाम लॻायो हो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
5: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-338-5569।
6: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज़ टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहराबपुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: कने गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे तो राबते लाइ 0301-96-851।
1: आमीन। नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन है, पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे
1: हाई क्वालिटी पीसी 5 साल की वारंटी के साथ।

शाहराह भुट्टो शहीद बेनज़ीर जो मनसूबो हो जैसे सिंध हुकूमत मुकम्मल कयो आहे। शाहराह भुट्टो कराची की मुआशी तरक्की जदीद ट्रांसपोर्ट ए शहरी सहूलत की नई सुणप बणबो। कराची सिंध की जान ए पाकिस्तान की दिल है। शहर की तरक्की असांजी पहिरीं तरजीह है। पाकिस्तान के खात्मे लाए कोशिशों तेज कर छू। घरू वजीर मोहसन नकवी की 24 कलाक दौरान ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची से तेहरान में भी अहम मुलाकात। तेहरान ए वॉशिंगटन में इम्कानी मुआहदे वारन तजवीजन ते भी गालियों। ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स मूजिब इन अगवाणन अमरीकी ए ईरानी तजवीजन ते तफसीली गालबल ते पान गाड़ी हलाए रस्ते जो जायजो भी वरतो। कुछ देर में जलसे के भी खिताब कंदो। वडे वजीर मुराद अली शाह चयो आहे त शाहराह भुट्टो शहीद बेनज़ीर जो मनसूबो हो जैसे सिंध हुकूमत मुकम्मल कयो आहे। शाहराह भुट्टो कराची की मुआशी तरक्की जदीद ट्रांसपोर्ट ए शहरी सहूलत की नई सुणप बणबो। कराची सिंध की जान ए पाकिस्तान की दिल है। शहर की तरक्की असांजी पहिरीं तरजीह आहे। दुरी मुआदे के हतमी शिकिल दियण लाइ हिक बे के पाकिस्तान जरिए पैगाम पहुंचाए रही आहिन। ईरानी अमलदार मूजिब अमेरिका से अञा ताईं मुआदो तय नाहे थियो। इख्तिलाफन में घटताई जरूर थी आहे। आबनाए हुरमस ते ईरान टोल लगायो तो तेहरान ए वॉशिंगटन में सफारती मुआहदो न थींदो। दुनिया में केर भी आबनाए हुरमस ते टोल जी हक में ना है। अमरीकी परदेही वजीर मार्को रोबियो चयो आहे तो तेहरान सां गालहिन में कुछ मुस्बत इशारा मिलिया आहिन। वधीक पूरो में नाया ईंदड़ कुछ दीहन में शयूं वधीक वाज़े थी वेंदियूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के अहम दौरे से सुभाने बीजिंग रवानो थींदो। परदेही तर्जमान ताहिर हुसैन अंदरा भी चयो आहे त वजीर आजम सुभाने खां 26 मई ताईं चीन में मौजूद हुंदो। सदर शी जिनपिंग वजीर आजम ली चियांग ए बियन सां अहम मुलाकातूं कंदो। पाकिस्तान जो विचोबर में छिकताण के खात्मे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। घरू वजीर मोहसन नकवी तेहरान जा ब अहम दौरा कया आहिनि। नायब वजीर आजम मिसाक डार भी आलमी अगवाणन से राबते में आहे। फील्ड मार्शल की तेहरान के दौरे बाबत तस्दीक या तरदीद न कंदसि।

0: रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरा पुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई 12 इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पैंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00-003।
6: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
6: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
7: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04-372 आई 0242-46-01-00।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International.
3: आज हमेशा की तरह आ चुका है आपके साथ आपके अपने शो I Love You All में. कैसे मिजाज यहाँ दोस्तों के सब ठीक ठाक हैं. उम्मीद करता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस गर्मा गर्मी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे. जनाब हम आपको बताएं कि आज सखर का टेम्परेचर कितना है. आज सखर का टेम्परेचर है जनाब 41 सेंटीग्रेड और फील 50 वाली आ रही है जनाब. लेकिन कोई गल नहीं, थोड़ी सी हवा भी चल रही है और गर्मी को जितना फील करेंगे उतना ज्यादा ही फील होती हो रहेगी. तो हम चाहते हैं कि आप इतना ज्यादा गर्मी को फील ना करें. आप ट्यून करें GFM88 नेटवर्क और जनाब मेरे साथ आ जाएं 5 से 7 बजे तक तो कंफर्म है आपको गर्मी नहीं लगने वाली. क्योंकि जनाब हम आपको सुनवाएंगे बहुत जबरदस्त से गाने करेंगे आपके साथ, बहुत सारी जबरदस्त सी चिट चैट और जनाब आपके मैसेज भी शामिल शो करेंगे जो कि आप बड़े प्यार के साथ हमें भेजते हैं जनाब. और बजरिया GFM88 नेटवर्क के प्रोग्राम आई लव यू ऑल में खैर जनाब आप हमारे साथ मौजूद हैं और यूं ही एंजॉय करेंगे. हमारी लाइव फीड पे जो है वो भी आ रही है हमारे साथ. बहुत सारे लोग हैं जनाब जो हमें मैसेज कर रहे हैं. आगा जब्बार साहब कहते हैं एक्सीलेंट जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑलवेज. आगा जब्बार साहब कहते हैं और मैं भी उनको ये कहता हूं. इसके बाद जनाब फराज अली कहते हैं आई लव यू सर, थैंक यू सो मच फराज. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा फराज. फराज अली गांगरो और जनाब इसके बाद नजीर खोसो हैं सोबतपुर बलूचिस्तान से, ये भी हमारे साथ हैं. और जनाब आगा जबार साहब कहते हैं आपने बकरा लिया. अरे जनाब मैंने बकरा भी नहीं लिया क्योंकि आपको पता है ना कि हमारी सैलरी वाली स्टार्ट हुई 11 महीने हो गया जनाब. हम गरीब लोग कहाँ से बकरे लेंगे, हमने तो ईद के कपड़े तक नहीं लिए सर. अब रुलाएगा क्या, बस कर पगले. और जनाब अशफाक आपके साथ मौजूद है. बकरा ईद का सीजन है और बकरा ईद का सीजन है तो जनाब मंडी वंडी सज गई है जनाब. ईद का सीजन है और बकरा ईद का सीजन है तो जनाब मंडी वंडी सज गई है जनाब. कुछ ही दिन बकरा ईद में

0: में बताएं वजाहत अली हमें देख रहे हैं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारे साथ रही इम्तियाज अली लशारी हमारे साथ हैं। वजाहत अली कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम, मौला अली मदद या अली मदद और मौला अली मदद कैसे हैं सर जी? आई एम बिल्कुल फिट एंड फाइन। फकीर मोहम्मद यूनुस जो तो ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आरजे जाहिद शाह कहते हैं कैसे हो सर? आरजे भाई कैसे होता है एक आरजे हमेशा जबरदस्त, हमेशा फुल ऑफ फन और हमेशा जिंदगी से भरपूर, तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूँ जैसे आप हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो जनाब हमारे पास कॉलों की भरमार आना शुरू हो चुकी है। लोग बोलते हैं कॉल ही नहीं लेते, कॉल नहीं लेते, कॉल नहीं लेते। जनाब मैं चाहता हूँ कि आपकी कॉल्स में भरपूर तरीके से लेता रहूँ और जनाब इसी तरह से जो है आपकी साथ चलता रहूँ। और मैं चाहता हूँ कि बस आप लोग हमेशा खुश रहें, चाहे आप कॉल के थ्रू लें रहें, आपकी कॉल अटेंड करूँ, चाहे आपके मैसेज पढ़ के मैं पढ़ूँ, तो आप खुश रहें। तो जनाब हमेशा खुश रहा करें क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, खुश रहने का नाम है। क्योंकि परेशान अगर हम होंगे तो इससे हमारी कल की जो मुश्किलें वो दूर थोड़ी ना हो जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा पुरसकून रहें, खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। शफीक भट्टी हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर अब्बास मंगी साहब हमारे साथ हैं जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं कहीं बैठे हुए, और जनाब जहां रहे हमेशा खुश हैं। शफीक भट्टी कहते हैं हम फ्रॉम सऊदिया, क्या बात है, अब सऊदिया से है। तो जनाब सऊदिया वालों को हमारा ढेर सारा सलाम, और जनाब अपनी जिंदगी की रौनकों को आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, जिंदगी को भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे साथ रहिए, इसी तरह से इंजॉय करते रहिए। और जनाब जिस जिसके पास भी स्टार्स है ना, आजकल फेसबुक पे बड़े स्टार्स चल रहे हैं, तो जिस जिसके पास भी स्टार है तो मुझे देता रहे। और जनाब इस जो मेरी फीड चल रही है इसको बहुत ज्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें जनाब कि मेरा फेसबुक मोनेटाइज हो जाए। देखें जनाब अपने काम भी करवाते रहते हैं बंदा। तो जनाब क्यों ना लेते हैं शो की पहली पहली कॉल और देखते लाइन पे कौन है, ज्यादा देर नहीं करवाते आपको। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: खालिक लशारी गल आयो।
0: अदा खालिक लशारी साहब केड़ा हाल चाल है ता जा?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिठड़ा बा तमा बुदायो।
0: अल्हम्दुलिल्लाह मा भी फर्स्ट क्लास आया। और इयो बुदायो खालिक लशारी साहब, त ईद जी तैयारियों की थी हलन ता जी?
1: हां बिल्कुल वीआईपी नमूने सा बकरा बकरा खरीद के आ कपड़े जा जुरा जूतियों टोपियों माशाल्लाह जेड़ो हाल है मना वी दी की वीआईपी तैयारी
0: की। जबरदस्त जबरदस्त या ता बकरो भी खरीद कर चुको आयो, कपड़ा भी लट्टा भी जूता भी बस ऐसा ही बैठायो आ जाता है। दिसो ना हालत
1: पई आवा जला जा बकरो वठी दियो जा।
0: वाओ घणे जो ता बकरो वतो आप?
1: 25,000 में।
0: माशाल्लाह यार माशाल्लाह 25,000 में बकरा लिया खालिक लशारी भाई ने, यार ये बहुत अच्छी बात है। तो घणे उनमें घणो गोश्त निकरंदो माना?
1: अरे ना गोश्त रिसो ना रो तोरो कोने अंदाजे सा जेत्रो वजन हो माशाल्लाह ठीक ठाक वजन सुठो ही है।
0: गुड गुड गुड माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त खालिक लशारी भाई, तमा त सफा तेज निकता हो माना तमाम घणी तैयारी ता करे छरी आ, इज गुड या जबरदस्त गाल है। अच्छा खालिक लशारी भाई गानो कड़ो बुदा दो?
1: अरे गानो आज पाजी असदार जे हाले पोटो आ ने उनी शायरी है मीरपुर खासा जा मोर तो सा दिलड़ी लगाई है।
0: मीरपुर खासा मोर अदा गुल तदी मुखी मीरपुर खासा मोर या तो दिलड़ी
1: लगाई है। आज मेहरबानी करे आलो।
0: ओके ओके अली को मैंने कहा है वो ढूंढ के दे रहा है, वरना मेरे बस की बात नहीं है। और ये कहीं जाना था करना चाहे हो?
1: जी आदा अजीज दरबार है, अजीज सोलंकी है, कुर्बान अली खास के लिए है, गुलाम रसूल मरी है।
0: ओके ओके थैंक यू खालिक भाई, थैंक यू
1: मेहरबानी भाई,
0: थैंक यू। खालिक लशारी भाई हमारे साथ थे और मैसेज के थ्रू हैं फकीर मोहम्मद यूनुस जो कहते हैं फना हो गई मोहब्बत, फना हो गई चाहत, फना हो गई इज्जत, महफिल तो है इस जमाने में मगर फना हो गई राहत, खूबसूरत फूल तो होते हैं मगर आजकल इसमें खुशबू नहीं होती तो फना हो गई राहत, हाय अफसोस जमाना। लगते हैं जनाब फकीर मोहम्मद यूनुस जतोई को जमाने ने बहुत सताया है और इसीलिए ये जो हैं आज जमाने की बात कर रहे हैं कि सब चीज़ फना हो गई, लेकिन जनाब सब कुछ फना नहीं होती। मैं गाना ही भूल गया यार, और वो था कश्मोर जे सोने दिल दल है इस तरह कुछ था, तो आप थोड़ा सर्च करो। हाँ और अक्रम मुगल कहते हैं हेलो भाई क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। माजिद अली मलिक कहते हैं आदा साईं खुश आयो? बिल्कुल साईं मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया, तमाम भारन जी दुआओं में सा गदायन। इम्तियाज अली लशारी कहते हैं हंसते मुस्कुराते रहो, आमीन आप भी हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, लेते शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: हां कोई भी कश्मीर वालों सर्च कर आई दो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं
2: सर, खुश हैं
0: जी। फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास मजे में। यो बुधायो तो केड़ा हालचाल तब कितना प्या गलायो?
2: अल्लाह से साहब वाली गुड नदी का बंबरे साईं मां दिन बंबरो।
0: अच्छा इमाम दीन बंबरो साहब केड़ा हालचाल हैं ता जा?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से साहब ता खुशहाल हैं जो पैरा।
0: फर्स्ट क्लास मजे में। यो बुधायो तो जिंदगी की थी हले बिल्कुल बिल्कुल ठीक था चाहो चोट चढ़ी वही महंगाई जो दहाई सड़े तो
2: बिल्कुल
0: बिल्कुल बेशक बेशक अल्लाह साईं राज़ी।

0: थींदो छो न राज़ी थींदो। ऐं माजिद अली मलिक, तव्हां भले पंहिंजी फरमाइश ॿुधायो असांखे, मैसेज कयो अथव। अदा, इहो ॿुधायो त जेको हाणे मां गानो थो प्ले कयां, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? हाणे अलाए कहिड़ो ॿुधाईंदा असांखे माण्हू फेसबुक ते, उहा असां प्ले कयूं था। असांजो माजिद मलिक साहिबु आहे, हिकिड़ो मैसेज करे थो, उहा चए थो मां गानो ॿुधायो। अच्छा, कंहिंजो आहे कंहिंजो आहे गानो? इहो
1: मुख़्तार सीडी आहे, जे करे हलायो।
0: अच्छा, तव्हां वरी गुनगुनायो, तव्हांजी आवाज़ माशाल्लाह भली हुई। हमेशा हर ईद कराए, ऐं तव्हां हर ईद ते हमेशा मुस्कुराईंदा रहो। थैंक यू सो मच इमामदीन साहब।
1: ओके,
0: थैंक यू। जाहिद भाई हमारे साथ हैं, जाहिद अली कहते हैं, कैसे हैं आप? जाहिद हुसैन फ्रॉम शिकारपुर। सैयद मोहसिन इमरोटी भाई हैं, ऑलवेज माय रिस्पेक्टेड ब्रो। सलाम अशफाक भाई, द प्रिंस चार्मिंग, थैंक यू सो मच, आई लव यू। और आप भी प्रिंस चार्मिंग, थैंक यू सो मच। और इरफान अली शाह कहते हैं, मेरे नाम लेने आप सैयद इरफान अली शाह रोड़ी से। सैयद इरफान अली शाह रोड़ी से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, बहुत अच्छे प्यारे से भाई हैं। नासिर महमूद हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इरफान अली शाह कहते हैं, अदा जी अदा हाजिर तमाम जो अदाब, और ईद भलारी आहे मुझी। और ये मैं प्ले करता हूँ इंशाल्लाह, बड़ा प्यारा सा गाना उन्होंने मुझे बताया है, मुख्तियार अली शीदी का। सो आप भी मुझे बताइए। नासिर महमूद हमें देख रहे हैं, मुजफ्फर अली सुमरा हमें देखते हैं, लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, इस्तक़बाल छाला
0: साईं, तव्हां जा कुर्ब, तव्हां जो प्यार, तव्हां जी दुआओं मां बिल्कुल ठीक ठाक आहियां। तव्हां ॿुधायो।
2: असां
0: जंहिं महकमे में आहियूं न, हुनजा अञा पघार कोन हली आहे, 12 महीना थी विया
2: आहिनि।
0: बसि हाणे छा कयूं, हाणे कंहिं किदा ॾियूं, कहां रणे कहां रोए, इहे बताए। असां लाइ बि आज़ार आहे, बाक़ी असां छा मिनिस्टर जा पुट थोरी आहियूं, जा असांजे लाइ आज़ार कोन हूंदा। बिल्कुलु बिल्कुलु, असांजो वॾो नेटवर्क आहे माशाल्लाह, असांखे फैसिलिटेट बि करे थो। तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हां किथां कॉल कई आहे? लाड़काणे वारा यार, सिर्फ़ लाड़काणे में न बल्कि हिते बि इलाही गर्मी आहे। रात थोरी थधी आहे, बिल्कुल जनाब। माजिद अली कहते हैं, जनाब तो फैल खान सैंदरानी जो कलाम ॿुधायो। ओके, नासिर महमूद सरगोधा से मैं मैसेज करें, थैंक यू सो मच। सैयद मोहसिन जी जी जी, जी। अच्छा, पखी परदेसी जलाल चांडो का। हाज़ुर हाज़ुर, ॿुधायो दोस्तनि खे डेडिकेट कयो बाद। मोहम्मद अमीन सुमरो, थैंक यू सो मच। अदा, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो, थैंक यू। सैयद मोहसिन रोडी साहब कहते हैं, सलाम मोहम्मद अशफाक खान भाई, द प्रिंस चार्मिंग, थैंक यू सो मच वंस अगेन माय स्वीट ब्रो। आप भी सुनाएं कैसे हैं, और आप मेरा शो ड्यूरिंग द ड्राइविंग एंजॉय कर रहे हैं, या घर बैठे एंजॉय कर रहे हैं, या दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। वजह अली कहते हैं, अशफाक भाई आज तो माशाल्लाह ब्लैक ब्यूटी लग रहे हैं। आप यकीन करें, मैंने ये सूट नहीं पहना था, इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, और लाइटिंग ने इतना तबाह किया हुआ है कि लाइटिंग आ नहीं रही, कोई और ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास, तो मैं ये काला सूट पहन के आ गया हूँ। गर्मी लग रही है मुझे बहुत, और थैंक यू सो मच कि आपको ये काला सूट मुझ पे बड़ा अच्छा लगता है। आई लव यू ऑल। और आप मुझे कॉल कर सकते हैं जनाब 03000113488 पर, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैं देखता हूं जनाब, हमारे फेसबुक पेजेस पे भी बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। नज़ीर खोसो हैं सोबतपुर बलोचिस्तान से, वो यहाँ भी मैसेज कर रहे हैं, यहाँ पर भी मैसेज कर रहे हैं। नज़ीर खोसो साहब, बड़े तेज़ हो आप। और जनाब आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे लाइव फीड पर आ रहे हैं, इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और स्टार्स भी स्टार्स दें जनाब, स्टार्स भी स्टार्स दें। और जनाब अब हम प्ले करते हैं बहुत प्यारा सा गाना, इस वक्त मेरे पास लग गया है, वो वाला ईद वाला जो कह रहे थे वो प्यारे से भाई, के ईद भी
3: करेंगे और
0: हाँ ईद भी क्या कि न क्या, तो ये ईद भले तवां क्यों आई, इन गाने के भी इंजॉय क्यों, और हमारे साथ भी रहें आप, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं जनाब। हम प्ले कर चुके हैं प्यारा सा गाना, तो ये गाने की आवाज़ क्यों नहीं आ रही, आ रही है नहीं आ रही है। हाँ जनाब, इस गाने को सुनिए और सुनते रहिए जनाब, आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी। वजाहत अली हैं, कहते हैं पनवाकिल वाले आपको याद कर रहे हैं। अशफाक भाई थैंक यू सो मच यार, मैं भी पनवाकिल वालों को याद कर रहा हूँ, चक्कर लगाएं सर, खिदमत का मौका दें। अशफाक भाई बिल्कुल जनाब, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। जाहिद अली कहते हैं और अशफाक भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप गाना सुने, इसके बाद एक कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। थैंक यू सो मच।

0: सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: आपके साथ है 5:37 टाइम इज राइट नाउ। शाम के ढलते साए और आप लोग आज जुम्मे की छुट्टी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छे ना बच्चे, अच्छी बातों के साथ इंसान को हमेशा अच्छा सोचना भी चाहिए, अच्छा बोलना भी चाहिए, क्यों भला। अरे जनाब, ये सेहत के लिए बहुत ज़रा जरूरी होता है और आपकी पर्सनैलिटी के बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, तभी आप लोगों के दिलों में घर करेंगे। और बदगुमानी और जो बदजुबानी होती है ना, दो ऐसे होते हैं इंसानों के अंदर जो हर कमाल को जवाल में बदल दिया करते हैं। इसीलिए जनाब, इस कमाल और जवाल से बचिए और बदगुमानी और बदजुबानी से परहेज कीजिए, क्योंकि जनाब ये इंसान की पर्सनैलिटी को घिरन लगा देते हैं। और जब इंसान की पर्सनैलिटी को घिरन लग जाता है तो फिर जनाब इंसान किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए हम चाहते हैं जनाब कि आप उन तमाम नेगेटिव चीजों से, उन तमाम नेगेटिव वाइब से दूर रहिए जो कि आपकी पर्सनैलिटी को घिरन लगा सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप ऑलवेज शाइनिंग पर्सनैलिटी के साथ लोगों का वेलकम करें, लोगों की जिंदगी में एंट्री दें, ताकि आप लोग हमेशा सदाबहार बनकर जिएं और हमेशा लोगों के दिलों की धड़कन बनकर जिएं। आपका अपना अशफाक आपके साथ है जनाब। लेते हैं शो की एक और कॉल और जनाब अपने कॉलर को हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, और नंबर है हमारा 03000113488। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर।
0: हाँ जी, केर असा सबनी सा गड।
1: हां, चेतन कुमार गला से काले डमरे।
0: चेतन भाई, केड़ा हाल चाल, तब ठीक ठाक आयो?
1: जी जी बिल्कुल ठीक ठाक, तमाम बजा ठीक है,
0: सफा फर्स्ट क्लास। चेतन भाई, यो बुधायो छा गंदा होता?
1: नहीं, आऊं स्कूल पढ़ने आया।
0: माशाल्लाह, केड़ी क्लास में?
1: हां टेंथ में।
0: मैट्रिक में? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। त तमाम जा हाने हाने मोकली ठण वारी वन? मोकलन में छा करना चाहियो था? छो त मोकलन के भी तो मानू यूटिलाइज करे ना, ईअं न त माना नानी जे घर वञे, दादी जे घर वञे, पर वरी भी थोड़ो घणी पढ़ाई जरूर करे, कोई कोर्स करे वठे, त तव्हांजो छा इरादो
1: आहे?
0: वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, यह सुठी गाल है। अच्छा यो बुधायो मुजम्मिल, त मां गानो तो प्ले किया तो फैल सजरानी जो कहे जे नाल ते करना चाहियो? वालेकुम अस्सलाम चेतन भाई, थैंक यू सो मच तां सां के कॉल कई आ। हाँ बिल्कुल, हीर तो बुधायो, हीर तो बुधायो। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर, बस ये मोकलू थियण वारियूं आहिनि, तमां तां सां इंशाल्लाह रोज प्रोग्राम करण जी कोशिश कंदुमि इंशाल्लाह।
1: हाँ ये ॻाल्हि ॿुधो।
0: जी जी, माशाल्लाह जबरदस्त आहे यार, तव्हां त मुंहिंजा प्यारा प्यारा लिस्टनर आहियो, दोस्त आहियो, तॾहिं तव्हां ॿुधंदा आहियो न?
1: जी बिल्कुल, स्कूल खां ईंदा आहियो न?
0: जी जी,
1: पोइ रेडियो ट्यून कंदा आहियूं, ॿुधंदा आहियूं, पोइ वरी शाम जो छोकिरनि खे ट्यूशन पढ़ाईंदो आहियां घर।
0: अच्छा
1: जी जी,
0: सही सही, माशाल्लाह तव्हां इहो महिनत रखो, इनशाला ताला तव्हां हिकु ॾींहुं पंहिंजी मंज़िल ते पुॼंदव ऐं कामयाबियूं हासिल कंदव। थैंक यू चेतन भाई, थैंक यू सो मच। इधर हमारे साथ है चेतन भाई, और चेतन भाई के बाद हमारे साथ मैसेज पर हैं अब्दुल रजाक भाई, कहते हैं मोहम्मद खान कुम्भार, वफा जमाल कुम्भार, इजाज कुम्भार, हाली पोचो स्टॉप लग झलोरी, मेरे को खास खान शो बुधो पिया, तमाम घणो मजो पियो अचे, चई था चवन था त न कपड़ा वताए, न जूता वताए, न कुझु वरितो आहे छो त ग़रीब माण्हू आहियूं। त बिल्कुलु जनाब, महंगाई एतिरी चोट चढ़ी वई आहे त या कपिड़ा या लटा या जूता या माना सभु शयूं ख़रीदण असां जहिड़े ग़रीबनि जे बस में कोन्हे, पर जेतिरो बि थी सघे तव्हां पंहिंजी ईद खे इंजॉय कयो ऐं ख़ूब इंजॉय कयो। थैंक यू सो मच। माजिद अली मलिक कहते हैं यार असांजी फरमाइश पूरी कोन कई, अबा मां हलायां थो गानो, थोरो सबर। थैंक यू सो मच माजिद अली मलिक साहब। आरिफ अमीन साहब हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। जाहिद समेजो हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जाहिद समेजो इज हियर। ओके जनाब जाहिद समेजो भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और अब लेते हैं शो की एक और कॉल, 03000113488 हमारे नंबर है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम संचाला।
0: सर मजे में बिल्कुल ठीक ठाक, तुम केर असा सबनी सा गद? अमीर बख्श मंगनहार साहब, केड़ा हाल चाल आहिन? अलहमदुल्ला, मूंखे लॻे थो तव्हां हिन वक़्तु रोड ते बीठा आहियो, छो त पा पा पा पा पा
2: पंहिंजी आवाज़ नवाब शाह वञे पिया।
0: नवाब शाह था वञो, माना सफ़र में आहियो?
2: सफ़र में मीरपुर कास वञो पिया, हिन जे करे मुंहिंजे भाउ सां ॻाल्हाए वठूं।
0: अच्छा जबरदस्त जबरदस्त यार, हैव अ सेफ जर्नी, अल्लाह ताला तव्हांजे सफ़र खे बख़ैर आफ़ियत पंहिंजे अंजाम ताईं पहुचाए। इहो ॿुधायो छा छा करणु वञो था मीरपुर खास में?
2: बस घुमण फिरण वञूं था मिट न।
0: वाह वाह माशाल्लाह,
2: ईद में मटिणो आहे, ॿियो ख़ैरु आहे, ख़ुशि आहे,
0: ॿियो ठीक ठाक, सफ़ा मज़े में। इहो ॿुधायो हाणे किथे पहुता आहियो?
2: हाणे खंत्र मार में हूं।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। यो बुधायो तो फैल संजराणी जो गानो तो प्ले किया के नाले थे करना चाहो
2: यार दोस्त आलादाद मार मोहम्मद अली मार पठान खान पटके रो अब्दुल्ला भंगार। ओके
0: ओके मुजा प्यारा भा खैर सा पुजो आई हमेशा खुश रहो। जी जनाब हमारे साथ बहुत प्यारे से भाई जो के नवाब शाह या खैर मीरपुर जा रहे थे, तो जनाब बहुत से लोग सफर में हैं, तो हमारी यही दुआ कि अल्लाह ताला उनका सफर जो है बखैर आफियत गुजारे। लेते हैं शो की एक और कॉल। हमारे साथ हैं आरिफ अमीन साहब, कहते हैं जिंदाबाद अशफाक ब्रो, थैंक यू सो मच आरिफ साहब, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वही जतोई असा सबनी सा गद आहिन अगर मां गलत ना आया था।
3: साईं बिल्कुल वफा भाई जतोई केटी बिलो ताल को जलो सखरा। साईं
0: वफा साहब केड़ा हाल चला है ताजा।
3: साईं शुक्रा शुक्रा जी शदीद गर्मी बगान तीनो पूजन को जल्ला जी मेहरबानी आता
0: वा। हां वाकई वाकई यार
3: शरीर शो बुधो था
0: थद पई थी। हां में
3: जी जी लश पछाली चल रहे
0: हो। वेरी गुड वेरी गुड। असा ये चाहूं था जे का भी असा के मानु बुधन उन जी हां में थदकार थी वने असा के बुधी करे।
3: जी जी साईं माता के डिमांड कई त बाबा टे दिन कयो छंचराचर न कयो।
0: यार असल में एकदम शयों न थिंदी वन, कुछ प्री प्लानिंग हुंदी आ, माना कुछ प्लानिंग हले थी, कुछ टाइमिंग दिसाऊ था, बेन जा भी प्रोग्राम आहिन त पो इन इन
3: जाता के वो दौर याद हो तो एकड़ो 9 बजे प्रोग्राम कदा जा वो टाइम रखो बिना कयो तक मेहरबानी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल त इंशाल्लाह असा शेड्यूल ठायो था, जी शेड्यूल ठयो था असा धराम करके अची विंदा से।
3: कयो अले आज केड़ो नगमो बुधराई दऊ
0: आज मेला नसीबन जा अजते मेला नसीब
3: तो माखे अलग था को बियो बुधाने सठो को जलाल चांडे जो।
0: हां जलाल चांडे जो ओके जलाल चांडे जो बुधांदा से जरूर छो ना
3: जलाल चांडे यो थो नगमो।
0: हां हां केड़ो
3: तक तू जे रसंदी त केर परचाई दो खुदा रसे त खुदा खुदा कजे।
0: अच्छा तू रसी दे केर परचाई दो।
3: केर परचाई दो आ कुछ मासा भाईर ब्या है ने।
0: जी जी जी
3: मुझो भाव जही रमन जतोई इन वक्त बुधे वो जही रमन जतोई जमील जतोई जाहिद जतोई इरफान जतोई इन वक्त खोड़ सारा सलामत डे कुराड़ो रसूल बश्क जतोई भी बुधे वो।
0: अच्छा
3: रफी को जतोई गोली मार में बुधे वो उन

हमारे साथ है जनाब वफा वहीद भाई और जनाब वफा वहीद भाई के बाद अब टाइम हुआ चाहता है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। हम चलते हैं एक अदद कमर्शियल ब्रेक की जानिब। इसके बाद आप जो है माजिद अली मलिक साहब की फरमाइश पे गाना सुनेंगे। अदद नंबर

0: पर। तो आप ये नंबर नोट डाउन करें, मुझसे बात करें, मैं आपका गाना भी चला रहा हूँ। बस आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक आ गई है बीच में, तो हम लेते हैं कदर कमर्शियल ब्रेक, हमें छोड़ के कहीं मत जाइएगा। सुनिए और सुनते रहिए GFM88 नेटवर्क से आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना, फातिह मेहरान, सिंध की एक और।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM88 नेटवर्क ते।
4: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। जिते मेला नसीब बन जा। बिल्कुल जनाब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपका अपना GFM88 नेटवर्क है और अशफाक नियाज़ी आपके साथ है। शाम के 7 बजे तक लेते हैं शो की एक और कॉल। देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। के सबनी सा गड
1: इशफाक भाई, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। के रसा सबनी सा गड
1: साईं कतकोड़ो मा सूफी माजिद अली मलिक
0: तकड़ो माची
1: माजिद अली मलिक
0: माच वाले करो तकड़ो माची आयो आसा वट
1: केड़ा आनंद खुश आयो
0: ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तमा बुधायो खैर सा आयो
1: दुआई दुआई अल्लाह जी मेहरबानी रब।
0: किथा कॉल गई है तमा? किथा केड़े शहर मा हो?
1: कंदकोट
0: पर सब की आन?
1: सब मस्त।
0: सब फॉर्म मस्त। एड़ा मस्त भी न थियो
1: जी असा मस्त हूं ना दिसदा फेसबुक ते ये मस्त हूं।
0: अच्छा, छा कंदा आयो दा नालो बुधायो वरी बियर मुके? माजिद अली मलिक।
1: सूफी माजिद अली मलिक।
0: एग्जैक्टली माजिद अली मलिक साहब, तमा हाने मुखे तांजी फरमाइश पूरी कई ना मां फेसबुक ते तमा मुखे मैसेज?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल वरी मेहरबानी लख कुर्ब।
0: ना ना कोई मसलो ना माजिद मलिक साहब, यो बताओ कम कर ताजा किया तालन?
1: सवा जबरदस्त सब अल्लाह जी मेहरबानी सा।
0: अच्छा जबरदस्त जबरदस्त, यो बताओ ता के शो की पे लगे?
1: माशाल्लाह जबरदस्त, मुनी फरमाइश ता पूरी किया सफा ये सफा मस्त कर छरे
0: भाईरन जी दुआओं, भाईरन जी दुआओं, बा भाईरन जी फरमाइश से रखें ते
1: अल्लाह अल्लाह कुछ कंदो रब पाक आबाद कंदो।
0: अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, हाने फौजिया सुबरो ता लायो छो ता एक दो फरमाइश करे तो बिल्कुल खास का
1: ठीक
0: है। वो केन जे नाले ता करना चाहो, केड़ो डेडिकेट करना चाहो ता?
1: मोहम्मद खान मलिक।
0: मोहम्मद खान मलिक ओनली?
1: ओनली।
0: क्या बात है यार, क्या बात है, ये होनी चाहिए।
1: मुझे मामू है।
0: मामू, मामी के भी डेडिकेट कयो ता? वाह वाह वाह वाह,
1: प्यारो आ मुके
0: प्यार। वाह वाह, मामा ता प्यारा हुंदा है ना
1: या मामू आ मामी के से?
0: अच्छा मामू वरी मामी के प्यारो आप?
1: विनन के डेडिकेट विनन कंदो सु
0: तमा के मामू प्यारो आ वरी मामू वरी मामी के प्यारो आ है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: इनन विनन के डेडिकेट
0: में इनन विनन के डेडिकेट ता के ता मामा ई मामी हमेशा सुखी रहन, खुश रहन, खिलंदा मुस्कुरांदा रहन, तमा भी खिलंदा मुस्कुरांदा रहो। थैंक यू अदा माजिद मलिक साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, हमारे साथ है माजिद मलिक साहब और इनका फरमाइश गाना हमने प्ले कर चुके हैं, लेकिन हम फौजिया सुमरों का गाना प्ले करेंगे अब्दुल रज़ाक की फरमाइश पर। शाहरुख खान बुर्रो हमारे साथ हैं, कहते हैं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब भाई हमारे साथ हैं जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं सखर से, कंदकोट से या फिर ढेरकी से, जहां से भी देख रहे हैं याकूब भाई कहते हैं हाय, हाय टू यू टू। और अब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: सलाम। मोहम्मद दीन कांदरो ठड़ी मीर वाखा, केड़ा हाल चाल है मोहम्मद दीन कांदरो साहब?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी अल्लाह जी, तमा खुश आयत बे ठीक ठाक। मुजा दोस्त है दृश्या दिल कांदरो, कला कासम अली कांदरो।
0: जी जी,
2: रोदन का दवान पसंद के पटोंदा पंगुड़ा नाइस आए।
0: हां हां,
2: तमा की आयो बाबा?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मां बिल्कुल ठीक ठाक है। हां, तमा केड़ो काम कर था क्यों दा? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त है, तमा सा प्रोग्राम बुधो है खोड़ सारो एंजॉय कयो। अच्छा गुड यार, गुड जबरदस्त। तमा जी आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, अच्छी कट कट कट कट कट करी थी अच्छी आवाज। हाँ थैंक यू सो मच, पांजो खास ख्याल रखो दादा, हमेशा खुश रहो, आई खिलंदा मुस्कुरांदा रहो हमेशा। और जनाब अब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। और जनाब हम आपके साथ हैं रात के शाम के 7 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: केर सा सबनी सा गरद आप?
3: शामीर अली चाचड़ पन्नो आके लगा गला है।
0: शामीर भा केड़ा हाल चाल तव?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जे एहसान मालिक जी मेहरबानी लगे पंता पांच हाल बदा सई ता खुश लगा जा टाटा मजन में।
0: अल्हम्दुलिल्लाह ता भारन जे असा सबनी सा गड दुआओं आहिं, तमा हमेशा खुश रहो। यो बुधायो त गानो बुधायो तो फौजिया सुबरो जो केजे नाल थकन चायो?
3: बस मुझे पीरी प्यारो दोस्त आए अब्दुल वहीद जतोई साहब आए, आसिफ अली चाचड़ा लड़काने को लुकमान चाचड़ा है, बाबू अदील अबड़ो साहब आए।
0: अच्छा,
3: अब्दुल्ला बंगवारा जेके पीरी प्यारा दोस्त बुधनता सबनी के खोड़ सारा सलाम।
0: वालेकुम सलाम, हमेशा खुश रहो, ऐसा के भी हर भी जरूर कॉल कर जो। थैंक यू सो मच अदाब,
3: खुदा
0: हाफिज। हम चलाते हैं जनाब अब्दुल रज़ा की फरमाइश पर, बहुत प्यारा सा गाना क्योंकि दोस्तों के साथ बैठ के हमारे शो को एंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब फौजिया सुमरों का गाल नथो मंजी मुझी बुधी, इस गाने को एंजॉय कीजिए और अशफाक नियाज़ी आपके साथ है शाम के 7 बजे तक।

0: Biotechnology. BS in
1: आपके अपने खाने पीने के अशिया
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द अज जल्द काबू पाया जाए।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाइ 03201800003

क़िलनि ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: जेको असां जी शिकायत दूर थी सघे थी, पाणी ज़्यादा इस्तेमालु करण सां इहा शिकायत ख़तमु थी सघे थी, फल फ्रूट इस्तेमालु करण सां इहा शिकायत ख़तमु थी सघे थी। अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो जेकॾहिं हिकिड़ी कुदरती शयुनि जी ॻाल्हि कयूं त जेकॾहिं कंहिंखे कब्ज़ थी वञे थो, अंजीर, अंजीर हिकिड़ो मादे जे लाइ तमामु अक्सीर आहे, अंजीर जेको आहे कब्ज़ जे लाइ तमामु बहितरीन आहे। टे दाणा सिर्फ़ु रोज़ानो राति जो जेकॾहिं पाणी में पिसाया हुआ रखंदो, सुबुह जो नेराणे जेको सो खाई उहो पाणी पीतो, वञे न सिर्फ़ु कब्ज़ जे हवाले सां बल्कि मैदे में जेकी बि तकलीफ़ आहिनि या इवन बवासीर में बि जेको आहे सो अंजीर अव्हांखे फ़ाइदो ॾिए थो। इन जे करे ऐं जेकॾहिं कंहिंखे एमरजेंसी आहे, कंहिंखे राति जे टाइम में फ़िलहालु जेकॾहिं कब्ज़ घणो आहे, डॉक्टर ताईं नथो पहुची सघे, तव्हांजे जेको आहे सो हथ में अरंडी जेके असां किस्ट ऑयल चवंदा आहियूं उहा बआसानी मिली वेंदी आहे, उहा इस्तेमालु करे सघो था। सिर्फ़ु राति जे टाइम में चारि चमचा जेको आहे सो खीर में विझी, नीम गरम खीर में विझी इस्तेमालु करण सां अव्हांजी कब्ज़ टुटी सघे थी, अव्हांखे काफ़ी सारो फ़ाइदो पइजी सघे थो। जेकॾहिं उहा अवेलेबल न आहे त स्पंगुर जी दुही रोज़ाना राति जो नीम गरम खीर में ॿ चमचा विझी ऐं उहा इस्तेमालु कयो, उन सां अव्हांखे फ़र्क़ु पइजी सघे थो। लेकिन रोज़मर्रा जी रूटीन में जेकॾहिं अव्हां सौंफ़ जो अर्क इस्तेमालु कंदो त इन सां अव्हांजो मादो बि ठीकु ठाकु रहंदो, मैदे ते सोज़िश जेकी आहे उहा ख़तमु थी वेंदी ऐं उन खां अलावा ख़ुश्की बि ख़तमु थी वेंदी ऐं अव्हांजी कब्ज़ बि जेको आहे सो ख़तमु थी वेंदी ऐं हू बि नेराणे जेको आहे सो असांखे टे चारि गिलास पाणी जा ज़रूरु जेको आहे सो पीअणा आहिनि, निंड पंहिंजी टाइम ते किरणी आहे। पाणी जेकॾहिं नीम गरम आहे अञा वधीक जेको आहे सो अव्हांखे फ़ाइदो पवंदो, छो जो इहे हिकिड़ियूं नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके असां खे ॿियो न ॿुधाईंदो आहे। हिन प्रोग्राम जी तवसु सां सिहत जी ॻाल्हि जेकी FM 94 मेहरापुर में जेको आहे सो मौजूदु आहे, उनजी तवसु सां असां पंहिंजे सामाइनि ताईं ॿुधणनि ताईं इहे जेको असां ॼाण पहुचाईंदा आहियूं ऐं अलहमदिल्ला इहा ॼाण ॿुधी खोड़ सारा दोस्त असां मुस्तफ़ीद थींदा आहिनि ऐं असांखे तमामु घणी ख़ुशी तॾहिं थींदी आहे जॾहिं असांखे फीडबैक मिलंदो आहे तव्हांजी असां इहे ॿुधायल शइ इस्तेमालु कईसीं ऐं असांखे हिन मां काफ़ी सारो लाभ हासिलु थियो आहे। सो अहिड़े तरीक़े सां अॼोको प्रोग्राम बि इन ई हवाले सां हुयो त अव्हांखे हीअ शयूं ॿुधाइण जो मक़सदु इहो ई आहे त तव्हां हीअ शयूं ॿुधी करे ऐं दवाउनि जे तरफ़ घटि वञो ऐं क़ुदिरती शयुनि जे तरफ़ ज़्यादा अचो। होम्योपैथिक जी दवाउनि में बि क़ुदिरती शयूं पियल हूंदियूं आहिनि, इन जे करे अव्हांखे असां होम्योपैथिक जो ॾिसी ॾींदा आहियूं त होम्योपैथिक दवा जो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को। वॾी महिरबानी,
1: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहब, मां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जे स्टूडियो मां अव्हां ताईं पहुचायो पियो वञे। उहो पंहिंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्तानी अव्हां सां गॾु आशी, डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं अस्पताल नवाब शाह। डॉक्टर साहब, सिंध जो मशहूरु मरूफ़ डॉक्टर, हिकु मुल्की सतह डॉक्टर बल्कि पाकिस्तान जो वॾो डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे। डॉक्टर साहब जो ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मोहबतूं आहिनि, जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में अचनि था। कॉल जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, पेट में सूर थो, माना जेको खाए थो कॾहिं थो करे, मादे जी अल्सर हूंदी या अहिड़ी जेको खाए थो उल्टी कंदो हूंदो, रत जी उल्टी त कान थी अचे न, बाक़ी खाली माना उल्टी थी अचे, अच्छा खाधो नथो वणे, मादे जो मसालो अथसि। डॉक्टर साहिब वटि इलाजु मौजूदु आहे, तव्हां भले सुभाणे ई हिनखे वठी अचो, को मसलो कोन्हे, को अलाह साईं ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे, रूबरू ॾेखारे वञो, प्रॉपर इलाजु कराईंदो, इनशाला सही थी वेंदो, को मसलो ई कोन्हे को वधीक। असांजे ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो। जी सर,
0: जी साईं, बिल्कुलु दोस्त खे ॿुधाईंदासीं त जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि करियमि त अर्के सौंफ़ जेके अर्क सौंफ़ आहिनि उहे ऐं जीरो अधु चमची राति जो पाणी में पिसाए रखो, सुबुह जो नेराणे उकाड़े उहो पाणी पीआरे, इनशाला ताला उन सां जेके बि पेट जा अमराज़ आहिनि ख़तमु थी वेंदा आहिनि। या पेपरमिंट शरबत मिलंदो आहे, अवां उहो वठी बआसानी पीआरे सघो था। फूदिने जी टिकियूं चूसराए सघो था, काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदा इन। जेकॾहिं इहे तव्हां इस्तेमालु नथा कराए सघो त रूबरू क्लिनिक ते ॾेखारियो, अव्हांखे इनशाला ताला नंढे खे मुकमल तरीक़े सां ट्रीटमेंट ॾींदासीं, इनशाला ताला नंढो ठीकु थी वेंदो। जी साईं,
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो। तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी अवां सां गॾु आहे, असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि सिंध जा मशहूरु मरूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु।

0: जो खास महरबानी आहिनि त असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था 0301-96-8051 प्रोग्राम में कॉल जी तरफ़ वेंदासीं ॾिसूं किथां जो कॉलर असां सां गॾु हूंदो काफ़ी दोस्तनि जूं कॉलूं अचनि पियूं सभिनी खे ख़ुशि आमदी चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम साईं मुंहिंजा केरु छा पियो ॻाल्हाए जी मुंहिंजा भाउ छा पुछंदा डॉक्टर साहिब खां
1: करीबी डॉक्टर खे ॾेखारे सघो था वरना रूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितर रहंदो आहे या लौंग जो तेल तव्हांखे मिली वञे त उहो जेको असां लॻाए सघो था हुन सां काफ़ी फ़र्क़ु पवंदो या घर में मिठी सोडा हूंदी आहे उहा लॻायो
0: इनशाह
2: कमज़ोरी
0: इन मसले लाइ फोन कई इलाज मौजूदु हलियो आहे डॉक्टर वटि को मसलो ई कोन्हे को एफ एम ॿुध डॉक्टर ॿुधाईंदी जी सर ॿुधो एफ एम ॿुधो
1: साईं बिल्कुलु रूबरू हुजे इनशाला ट्रीटमेंट आहे
0: सुभाणे सिहत जी ॻाल्हि थी मेरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ तव्हांजे समात में पहुचे पियो 0301-96-8051 हिकु ॿियो कॉलर ॾिसो किथां जो कॉलर गॾु हूंदो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम साईं मुंहिंजा केरु छा पियो ॻाल्हाए ख़ुशि आमदी चऊं था बुर्दी साहिब खे छा पुछंदा डॉक्टर साहिब खां मुंहिंजा भाउ वार छणी था वञनि दिमाग़ जी कमज़ोरी आहे ठीकु आहे घणी उमिरि
2: आहे
0: अच्छा को मसइलो ई कोन्हे को ॿुधो एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो
1: जी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूदु आहे अधे खे चवंदासीं रूबरू ॾेखारियूं वरना 7 बादाम रोज़ाना राति जा पाणी में पिसाए रखनि सुबुह जो नेराणे खाइनि इनशा ताला काफ़ी फ़र्क़ु पए
0: थी वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो पहिरियों हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़
3: अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए
5: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
6: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120

0: अच्छा माना कुख में सूर बि रहे थो, गोॾन में सूर आहे, तुंहिंजे जोड़नि में सूर आहे, पोइ त पंज महीना थिया आहिनि, पंजनि महीननि में तूं अॼु फोन कई आहे डॉक्टर साहिब खे, रूबरू बि न ॾेखारियो अथई मुंहिंजा मिठा भाउ। डॉक्टर साहिब रोज़ कलाकु टाइम कढी तव्हांजे लाइ ईंदो आहे असांजे स्टूडियो में। अच्छा नंबर अजत कयो अथव डॉक्टर साहिब जो, हलो माशाला एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाईंदो। जी साईं
1: अजी साईं बिल्कुलु अॼु इहे चवंदासीं त मल्टीपल प्रॉब्लम्स आहिनि, हिन जे लाइ रूबरू ॾेखारींदो त वधीक बहितर।
0: डॉक्टर साहिब पंहिंजो महिरबानी आहिनि, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु न आहियो, आख़िर में तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा असांजे मौज़ूदु ॿुधंदड़नि खे?
1: वॾी महिरबानी, एक्चुअली पछाड़ी में इहो ई आहे त हिकु त सदिको ज़रूरु ॾींदा कयो, ऐं उनखां पोइ जेके बीमार आहिनि इस्पतालुनि में उनजे लाइ दुआ ज़रूरु कंदा कयो त अलाह ताला उन्हनि खे सिहतयाबी ॾिए, ऐं जेके बे औलाद हज़रात आहिनि अलाह ताला उन्हनि खे औलाद नेरी ना था करे। वॾी महिरबानी।
0: सामिन डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहब असांजे स्टूडियो में मौजूदु हो, इस्लामाबाद, कराची, नवाबशाह, हैदराबाद जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहबु।

गुज़ारिश कंदा आहियूं तव्हां उन मां इहो फ़ाइदो हासिलु करियो त तव्हांजी जेका चेकअप फीस आहे उहा बची पवंदी। इन खे अॼु प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। असीं हिकु दफ़ो ॿीहर ज़रूरु चवंदासीं, जीव ख़ुशि त जहान ख़ुशि, जीव आहे सभको हिकिड़ो तव्हांखे ठीकु लॻंदो, बीठे जो सभको ऐं किरे जो केरु बि न आहे। तंहिं करे पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजे घर वारनि जो, पंहिंजे औलाद जो, पंहिंजे ॿारनि जो, पंहिंजे बचनि जो, नंढनि वॾनि सभिनी जो, पंहिंजे वालदेन जे सिहत जो बेनता ख़्यालु रखो। इन ते अॼु प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। ॿिए प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान हाकिम अली जिस्तानी खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान, अल्लाह वाहिद।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन
1: न्यूज़ मामले ते 1.5 लाख आहे मुआदे जो हतमी मसवदो तैयार करे छो है रुगो ब नुकता रंडक बनल अमेरिका एटमी प्रोग्राम ते तकड़ियों गालियों तेहरान 30 दिन लाए एतमाद की बहाली चाहे तो आबनाए हुर्मज में भी महफूज सफर लाए अथॉरिटी कायम करे छी है अमरीकी परदेही वजीर मार्को रोबियो भी ईरान से मुआदे लाए पुरोमेंद स्वीडन में मीडिया से गालाइंदे मार्को रोबियो है ईरान से गाल में पाकिस्तानी ट्रैकड़ी जो किरदार अदा कर रो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान वो है फील्ड मार्शल से मुसलसल राबते में आयो तेहरान से मुआदो न थो तो प्लान बी भी मौजूद है मुआदो थो तो आबनाए हुर्मज खुली वो

0: कि जो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। मुसलसल अमन होगा तो ये मुआशी मुश्किलात में कमी होगी। खास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वजीर आजम साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। ना सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग के खिलाफ तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जंग के खिलाफ नहीं है।
1: वजीर आजम ऐं फील्ड मार्शल ईरान जंग जे खात्मे लाइ कोशिशुनि में रुधल आहिनि। इसराइल अमरीका जंग जी क़ीमत समूरी दुनिया अदा करे पई। दुआगू आहियां त जंग ख़तम थिए ऐं अवाम जूं मुआशी मुश्किलातूं घटि थियनि। जंग ख़तम न थी त हालतूं वधीक ख़राब थींदियूं। कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त अमुन लाइ कम कंदड़ अलाह लाइ कम करे रहिया आहिनि। अहसासु आहे त अवाम मुआशी मुश्किलात जो शिकार आहे। अवाम खे हर मुमकिन रिलीफ ॾियण जी कोशिश करे रहिया आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन जे अहम दौरे ते सुभाणे बीजिंग रवानो थींदो। परडेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्रा बि चयो आहे त वज़ीर आज़म सुभाणे खां 26 मई ताईं चीन में मौजूद हूंदो। सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म ली चियांग ऐं ॿियनि सां मुलाकातूं कंदो। पाकिस्तान जूं विच ओभर में छिकताण जे ख़ात्मे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी तहरान जा ॿ अहम दौरा कया आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि आलमी अॻवाननि सां राब्ते में आहे। फील्ड मार्शल जे तहरान दौरे बाबति तस्दीक या तरदीद न कंदुसि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी शाहराह भुट्टो जे क़ायदेआबाद खां काठोड़ ताईं वारे तामीर थियल नए हिसे जो इफ़्तिताह करे छॾियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां गॾु शाहराह भुट्टो ते सफ़र कयो ऐं टैक्स बि अदा कयो। बिलावल भुट्टो क़यूमाबाद खां कराची पोर्ट एक्सप्रेस वे जे पीढ़ जो बि पथर रखियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त केटी बंदर ते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत नओं पोर्ट ठाहियो वेंदो। बदीन ऐं ठठे समेत समूरी साहिली इलाइक़नि जी क़िस्मत तब्दील कंदासीं। कराचीअ में सिंध इंटरनेशनल फिनांस सेंटर बि खोलियो वेंदो। सियासी यतीम अजायो वाविला करे रहिया आहिनि। साबित करे छॾियो आहे त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी डिलीवर करे सघे थी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3 85-569-03-00-33-8-5-69।

जगह जा पावा ऐं पाइप डेढ ब चार छह नव ऐं ॿारह इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793। खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460-1000

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0606-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0303-85-569-0300-33-8-55-69।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: जरूरी थोड़ी है कि आप जिस चीज में अच्छे हो उसी को अपना करियर बनाएं। Then I realized I was made for music.
1: जब तक मैं जिंदा हूं तुम वो सब कुछ करोगे और सुनोगे जो मैं

0: एलोवेरा फैन
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आहिन।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601100।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

केतिरा ई मरीज़ सिहतयाब थी चुका आहिनि। अव्हां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
1: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0300-5569-0300-5569

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 ऐं 0242460100।
4: शामीन व नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप ज़रूर पिलाइएगा।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301399-2836।

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूह वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर ए सोम

0: रखनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधिक राबते जे लाए 0385-569-0300-33-8559।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। मुसलसल अमन होगा तो ये मुआशी मुश्किलात में कमी होगी। खास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वजीर आजम साहब का मेहनत।

0: वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल ईरान जंग जे ख़ात्मे लाइ कोशिशुनि में
1: इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। मुसलसल अमन होगा तो ये मुआशी मुश्किलात में कमी होगी। खास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वजीर आजम साहब का मेहनत।
0: वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के अहम दौरे से सुभाने बीजिंग रवानो थींदो। परदेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्रा भी चयो है तो वजीर आजम सुभाने का 26 मई तई चीन में मौजूद होंदो। सदर वजीर आजम ए फील्ड मार्शल ईरान जंग के खात्मे लाए कोशिशों में जारी आहिन। गरू वजीर मोहसन नकवी तेहरान जा बा अहम दौरा कया। नायब वजीर आजम इसाक डार भी आलमी अगवाणन से राबते में है। फील्ड मार्शल की तेहरान के दौरे बाबत तस्दीक या

0: पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शराय भुट्टो के कायदाबाद का काठोर ताई वारे तामीर थे नए हिस्से जो इफ्तिताह करे छोड़ो। बिलावल भुट्टो जरदारी वडे वजीर से गड शराय भुट्टो ते सफर कयो ए टैक्स भी अदा कयो। बिलावल भुट्टो कयूमाबाद का कराची पोर्ट एक्सप्रेस वे जी पीड़ जो पत्थर भी रखियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।